0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.
3: Towering nearly 200 metres above the plains of central Sri Lanka, Sinagiri is one of the country's most striking historical sites. Also known as Lion Rock, this UNESCO World Heritage Site dates back to the 5th century, serving as the royal palace of King Kashipa. Its name is derived from a lion-shaped gateway that once stood at its entrance. Today, only its massive stone paws remain. While much of Sinagiri's architecture has been lost to time, traces of its foundations offer a glimpse of what it once was. The king's delicately carved throne can still be seen today, while ponds with complex filtration systems suggest a level of engineering that was ahead of its time. Following the king's death, Sinagiri was abandoned as a royal residence and later converted into a monastery. Even without its former grandeur, the view from the top is as majestic as ever.
4: Gas shortages have rocked major cities across India due to the Middle East crisis.
5: The LPG crisis has hit the restaurants really hard.
6: Gas mahangai ho rahi hai.
7: Bigger gas ke hamari factory nahi chalegi.
8: Nona na yena agutte anta id maadidvi. Amel nodide gas ilve illa. Pankatra vadre pankal no shaku naale barutte anta.
4: Can a biogas mart ease the country's energy crunch?
9: तो लगभग एक सिलेंडर यानी कि 20 केजी की जो वो बायोगैस प्रतिदिन बनती है
10: अगर ये ज्यादा प्लांट और बढ़ेंगे भारत है जेड़ा अपने आप ऊर्जा च आत्मनिर्भर हो सकता है
11: इंडिया इज द हंगरीस्ट मार्केट फॉर एनर्जी एंड यू नीम द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंडिया वांट्स इट इंडिया नीड्स इट
4: May 2026. Bengaluru, the capital of India's southern Karnataka state, is severely impacted by global gas disruptions. Nearly 60% of India's LPG and LNG demand is met through imports. A majority of those consignments are routed through the Strait of Hormuz. Disruptions to energy supplies from the Gulf have contributed to a global energy crunch. In India, the impact is being felt across the economy. Many auto rickshaw drivers like Shiv Kumar face the daunting challenge of filling their gas tanks.
8: ಹೌದಾ ಹಿಂಗಪ್ಪ ನಾಳೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಬಂಕಲ್ಲಿ ನೋ ಶಾಕು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 350-400 ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸುಮಾರು 4:30 ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೋರು ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟು 500 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸು
4: There's a cap imposed of only one refill per day in Bengaluru. And when pumps run out, drivers are turned away. Shiv now struggles to make ends meet.
8: ನಾವು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲೇ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಡೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನು ಆಟೋ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಇದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಸೇಟು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 150-200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೀ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು? ಜೀವನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ದುಡ್ದು ಅವತ್ತೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದುಡಿದ್ರೇ ಕಾಸು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ ಆಗೋಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ಕೊಡಿ ಅದು. ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ.
4: Industries aren't faring any better. India ranks 12th globally in natural gas consumption, using roughly 2.2 trillion cubic feet. Its disruption is severely felt in Firozabad, a major hub of traditional small-scale manufacturing. The city produces 70% of India's total glass output, earning it the title of the Glass City of India. They use a mix of piped natural gas, PNG, and liquefied petroleum gas, LPG, to fire clay furnaces, both of which are in short supply.
7: करीब 100 साल से यहाँ परिवार में बिजनेस का काम हो रहा है और इन चीजों को शुरुआत में जो शुरुआत हुई है ये इसकी फर्नेस जो होती हैं पहले कोयले से चलती थी परंतु कोयले से चलने के बाद जब ये टीटीजेड एरिया बनाया गया ताजमहल को सेव करने के लिए तो टीटीजेड एरिया बनाया गया. इस टीटीजेड एरिया में ताजमहल के सराउंडिंग 70 किलोमीटर कोई भी फ्यूल यूज नहीं होता ग्रीन गैस के अलावा. तो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड को गैस का प्रोविजन किया जिससे 2000 में ये गैस यहाँ पर आई. देखिए जब तक ये बार खत्म नहीं होता तो जब तक गैस का सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि जितने ये अपने देश हैं जहाँ लड़ाई चल रही है वहीं से गैस आती है. कि क्या सब लोग देख रहे हैं, कुछ करते हैं, बगैर गैस के हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी. फरोजाबाद में करीब 2 से 8 फैक्ट्रियाँ हैं जो टोटल डिपेंड गैस के ऊपर है. देखिए जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है हिंदुस्तान में जो गैस आती है वो कतर से ईरान इधर से आती है. इनके युद्ध शुरू होने से गैस का आना कम हुआ है. तो हम लोगों को जो आवंटन था DCQ पर डे का मिलता था हमको, उसका 20% उन्होंने कट लगा दिया है. इट मीन्स 20% हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, 20% लेबर बेकार हो गई.
4: Gas shortages have led to idle furnaces. Across the industry, output has reduced by nearly 40%, leaving many workers without jobs.
7: गिलास बैंगल की जो फैक्ट्रियाँ हैं इसमें जो है एक फैक्ट्री में 3 सर डेली काम करते हैं पर डे, परंतु इसके जो प्रोडक्शन होता है, इसके डेकोरेशन होता है, उसमें कम से कम 4 गुना एम्प्लॉयमेंट और होता है. और एक फैक्ट्री से लगभग 2000 एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति इतनी कम पैसे में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती. ये सब थोड़ी खासियत यहाँ पर है. हमको उम्मीद है कि युद्ध बंद हो जाएगा तो गैस की आपूर्ति फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी, जिससे पूरा एम्प्लॉयमेंट हम दे सकेंगे. और ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो गैस पूरा मिल जाए, इंडस्ट्री चले, एम्प्लॉयमेंट मिले, इसमें ही हमारी और देश की तरक्की.
4: इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर. द एनर्जी स्क्वीज एक्सटेंड्स एवरीवेयर. अक्रॉस इंडिया अथॉरिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड एंटी होर्डिंग मेजर्स, including a 200-litre cap on diesel purchases at fuel pumps to prevent artificial shortages and price hikes. The crisis underscores India's dependence on fossil fuels, which still meets around 80% of its energy needs.
11: India is the hungriest market for energy, and you name the source of energy and India wants it. India needs it. We consume roughly 5.8 million barrels of oil every day. And bulk of that, roughly 5.2 million barrels, is imported. We also have 700 million Indians who are still living below energy poverty line. The backbone of India's energy security, energy prosperity, that is fossil fuel. India urbanizes very, very fast. The growth of India, the story of India, is still driven by fossil fuel. What we have witnessed the last 7 to 10 years, the expansion of LPG in a very big way, probably the fastest growing LPG market in the world. And today we have roughly 340 million LPG connections across the country. As part of the government initiative, the government decided that every single household must have access to cooking gas. And so this scheme was heavily subsidized, heavily campaigned by the government. Bulk of this LPG before the Persian Gulf War was coming from countries like Qatar. In the overnight, the country was faced with a very difficult situation. The real challenge today is economic, is the, basically because the prices have gone up. And our economy was not prepared for it. Consumers was not prepared for it. The consumers can feel the heat in terms of both price and also very often the supply.
4: Restaurants, factories and hotels that are facing gas shortages have left a trail of unemployment across the country. Estimates suggest that more than 10 million Indians may lose their jobs temporarily due to gas supply disruptions. Migrant workers in urban centres are left with little choice but to return to their villages. 30-year-old Dolly Davy is one of them. She and her husband have both lost their jobs. They embark on the long journey home to their village in Bihar.
6: Gas is
4: According to India's last census held in 2011, the country had 54 million interstate migrants. Thousands of migrant workers have temporarily left major industrial cities amid job losses and rising costs.
6: जब से महंगाई बढ़ा है ना, एक दिन भी नहीं भरवाई हूँ गैस, लक्कर पे बना खा रही हूँ, किरेदार से लड़ाई कर रहे हैं, मकान मालिक लड़ाई कर रहा है, चूल्हे पे नहीं बनाने दूंगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, महंगाई बढ़ गई है। वहाँ पे काम है, स्टेशन पे काम करके खा लेंगे, गांव में चूल्हा पे बना सकते हैं, अपना मकान है, वहाँ तो नहीं कोई बोलेगा ना, यहाँ तो किराया का मकान पे बोलता है आदमी।
4: As the Indian government searches for alternative sources of natural gas, some Indians have found solutions closer to home by turning waste into biogas.
12: This week on Singapore Hour. Planning a trip to Singapore? Step into these heritage hotels for a stay like no other.
13: I feel like I stepped into 100 years ago.
14: Quite cool, huh?
12: And stop over at this Insta-worthy neighbourhood where tradition thrives and subcultures find their stage.
15: Kampung Glam represents a very different side that you don't really get to experience in Singapore.
12: Your Insider's Guide on Singapore Hour, Friday on CNA.
2: Saturday on Japan Hour. Getting to know beautiful Japan takes you on a pilgrimage of horses, hopes and heritage. Meet the sacred horse of Ese Grand Shrine. Horses that carry wishes to the gods. And the hardy Kantachimi horses, where every hoofprint tells a story. Japan Hour, Saturday on CNA.
16: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya, visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
17: Talak. มีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
18: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
19: How could this woman be a killer?
17: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
14: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
17: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
2: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia
19: Right in a chaotic moment.
20: Midnight later tonight here in Thailand, it's too little too late.
21: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
22: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
19: Each one doing what each one wants.
23: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
24: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
4: March 2026. LPG and LNG shipments from the Gulf to India have been disrupted by the blockade of the Strait of Hormuz. The disruption has triggered an energy crunch, with long queues for cooking gas cylinders across the country. But in one rural setting, a quiet energy revolution is underway. Housewives like 32-year-old Mitlesh Yadav are making a transition to renewable energy.
25: जब ये था कि पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे और एलपीजी से तो हम जैसे धुआं होता था परेशानी बनती थी हमें टाइम ज्यादा लगता था तो अब हम इस पे बनाते हैं तो अपने कभी भी कुछ भी काम करते हैं मतलब गैस बंद करी अपना काम कर लिया और चूल्हे का काम ये था कि परमानेंट पहले चूल्हे का ही खत्म करना है गैस की मतलब एलपीजी की ये दिक्कत थी कि कभी सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर हमें चूल्हे पे खाना बनाना है अब इस मतलब जब से ये गैस लगी है ना तब से हमें कोई परेशानी नहीं है तब से हम कंटिन्यू इसी पे खाना बनाते हैं टाइम टू टाइम मतलब एलपीजी से तो कम ही लगते हैं एलपीजी से तो जैसे कि एक सिलेंडर हमारा 20 दिन चलता है अब हमें सिलेंडर भरवाने की तो टेंशन है ही नहीं
4: Switching to the biogas system was her husband Arjun Yadav's idea.
26: सुबह को डेली गोबर उठा के इसमें इकट्ठा करके और उसको पानी के द्वारा मिक्स करते हैं घोल के वो उसके बाद इस डाइजेस्टर में जाता इसे हटा देते हैं इस तरह से अपने आप ही डाइजेस्टर में चला जाएगा ये इसका डाइजेस्टर है इसमें जो डाइजेस्ट होता इसमें डाइजेस्ट होने के बाद उसकी मीथेन गैस जो बनती है बायोगैस वो इस पाइप के द्वारा ये इसका गैस का पाइप है आउटपुट जो हमारा गैस भविष्य में ओवर फ्लो होती है ना इसमें गैस ज़्यादा बनती है हमने यूज नहीं करी कभी तो इससे वो ये है सेफ्टी वॉल से बाहर निकल जाती है वो हानिकारक गैस होती है वो यहीं फिल्टर हो जाती है आगे नहीं जाती है जो चूल्हे के बर्तन को काला करती है फिर उसके बाद गैस घर में रसोई में काम आ जाती है
4: The cow dung slurry that comes out as a byproduct from the methane digester provides additional benefits to this farming family.
26: और जो इसकी स्लरी निकलती है वो हमारे खेत में डलती है जिससे जो हमारा यूरिया डाई उसका जो कंजप्शन 25% रह जाता है जो पहले हम 100 केजी लगाते थे उसका 25% ही लगता है यानी कि 25 केजी और अच्छा रिजल्ट है इसका जो स्लरी का यानी कि 75% खाद बचत है और गैस का तो 100% बचत है गैस की तो एक साल से डेढ़ साल में इसकी कीमत रिटर्न हो गई हमें एक से डेढ़ साल में इसकी जो कीमत हमने लगाई थी वो तो रिटर्न हो गई अब तो फायदे फायदे का सौदा है अब कोई वो नहीं है
4: Since the 1980s, the Indian government has promoted biogas as a low-cost rural energy source. More than 5 million digester units have been installed across the country, converting farm waste into methane for cooking.
27: Every country who are dependent on the fossil fuels from the outside, they are facing the challenge. The government of India introduced Govardhan, Galvanized Bio-Agro Resource Dhan policy, promoting small-scale, medium-scale biogas plant. India has a huge potential. India can generate around 62 million metric ton CBG per annum. They have set a target to install 5,000 CBG project. And as per some current estimate, around 130 or 140 plant has already been set up. We can generate the gas in the village level that can be supplied to fulfill the requirement of our village. We have a huge potential to generate the CBG. So that will create long-term impact to reduce our import bill. It's a sustainable solution. We can also

0: Perched in the scenic hills of Himachal Pradesh lies the historic Sri Naina Devi Temple that was built in the 8th century AD. It's one of India's most revered Hindu shrines, dedicated to the goddess Shakti. Devotees from across India come here to worship, with more than 100,000 visiting on festival days. For generations, pilgrims here have been served free meals. But one aspect of this tradition has changed. It now uses kitchen waste to make biogas, cutting their reliance on expensive LPG cylinders. The temple's biogas digester processes 200 kilograms of food waste every day, producing around 20 kilograms of biogas. The gas is then used in the kitchen to prepare meals for devotees. Food waste is being turned into energy to cook the next meal. Head chef Nandlal ensures food for the visitors and the waste for the biogas plant doesn't run out.
1: Gas hi aa raha hamara pipe piche se ji. Supply sari bhattiyon ki supply isi pipe se hai. Sab bhattiyon se kalli kalli bhatti ki supply jo hai isi pipe se aa rahi hai. Ye dopahar ke liye ji. Ghee aur daal. Ye subah naaste ka chal raha hai. Aloo chane ki sabzi. Aur ek kadi dopahar ke liye sir. Subah se ji sabzi ki taiyari karni hai. Aata goondhna hai, puri taiyar karni hai. ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੋ ਲਗਾਣਾ ਮਾਤਾ ਕੋ 7 ਵਜੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੰਗਰ
0: ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਆਰ ਸਰਵਡ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੀਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ 500 ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਐਟ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ
1: वो पक्का एस्टीमेट तो हम बता नहीं सकते हैं श्रद्धालु जितना आते हैं माता के कभी हजार भी आ जाता है कभी 500 भी आएगा कभी 1500 2000 भी हो जाता है ये मतलब खुला काम है कभी 5000 भी आ जाएगा ये तो हमारा श्रद्धालुओं से आता है जी दान का भी आता है जो हमारे को कमी पड़ती है वो हमारे को लेना पड़ता है सरकार से वो
0: द टेंपल्स बायोगैस प्लांट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ धर्मपाल चौधरी who is the chairman of the Sri Naina Devi Temple Trust.
2: The belief and the mission behind this initiative ki actually jab maine yahan join kiya tha to humne dekha ki jo langar ka waste hai wo scientifically dispose of nahi ho pa raha tha aur jisse bahut sari samasya aa rahi thi even jo shradhalu aa rahe the yahan unse durgandh ya smell jo hai wo dekhi ja rahi thi ki wo smell kafi gandi thi और दूसरा इसका वेस्ट का कोई डिस्पोजल सही तरीके से नहीं हो रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वेस्ट से एनर्जी को बनाया जाए ये हमारा कोल्ड स्टोर है जिसमें हमारी सब्जियां या कुछ